0: நம்ம கேட்ட அந்த பாடல் ஹாய் நானா என்ற படத்தில் தான் ஒழித்தது. இந்த பாடல் பாவனா எஸ்வி பாடினாங்க. மதன் கார்கே எழுதி இந்த பாடலுக்கு இசை ஹேஷம் அப்துல் வாஹப். நேரம் 7:45.
1: शुद्ध नमक देना शुद्ध नहीं समझते वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता
2: है. ऐसा बोलो ना,
1: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान. ये हुई ना बात.
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके
1: सारे गुण.

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।